0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

0: इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है तो मैं और पास आऊं?
0: आओ ना।
1: नो, आओ।

जाने ना तू अली खान। हाँ, अली खान की आवाज में आप सुने और ये उजाला रेडियो है। इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा उजाला.nl।

जाना, जिंदगी से नहीं जाना, कभी नहीं जाना, जाना तुम नहीं जाना। एंड उजाला रेडियो से दूर भी कभी नहीं जाना।

रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनमलों, मैं हूँ सुभाष और हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9200 3090907। अरे काम काज के लिए आप लोग तार कर सके हैं। हमारा दफ्तर खुला रहता है सोमवार से लेकर शनिवार तक, सुबह में लेकर 10 बजे लेकर शाम में 3 बजे तक।

QR उजाला रेडियो है और जहां तक ये आवाज पहुंचती है वहां तक हम आप सभी को प्यार से दुलार से दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं।

वेल यार, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है इस तरह से कि कुमार सानू जी की आवाज में गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे।

तो इस तरह से कुमार सानू जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुनने वालों, कितना विशाल कितना मोय। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस तरह से होंगे, और हम सोचे कि गाना भी तो लोग के मोय लगेगा और इस तरह से।

देखा तो ये जाना सनम, लता एन कुमार सानू जी के आवाज में गाना जी प्रोग्राम में आप लोग सुने। युवा उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुने बोलो। कितना मोई कितना विशाल बोली इसके, बोले तुझे देखा तो ये जाना सनम।

हम आपके दिल में रहते हैं पहले भी न कहा, लो आज हम कहते हैं यार हम आपके दिल में रहते हैं। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। कुमार शानू एंड अनुराधा पौलवल की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे, हम आपके दिल में रहते हैं यार। यू आर उजाला के दिल में आप सभी रहते हैं।

इस तरह से गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। और इस तरह से गाना जो आप लोग सुने कुमार सानू एंड अलका याग्निक जी के आवाज में। अब की बार कुमार सानू एंड साथ देने वाली है आशा जी के आवाज में गाना जी प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे। बाल चेहरा क्या देखते हो यार,

बेल बेल यार चेहरा क्या देखते हो मेरे दिल में उतर कर देखो ना। अवसरण से आशा एन कुमार सानू जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

लाल कितना मोई कितना विशाल कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बोले बाहों में आ जाओ इन सपनों में बोले खो जाओ। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुने बोलो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, फिल्म का नाम धड़कन और गाने वाले कुमार सानू जी।

0: वेल यार, दो दिल बोले मिल रहे हैं एंड वो भी बोले चुपके चुपके यार,
1: चुपके चुपके,
0: मगर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं। और जो हमारे रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, हमारे प्यारे सुनने वाले, हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9 20 9 9 पर आप लोग तार कर सके हैं।

वेल, दो दिल ना, दो दिल, दो दिल जो मिल रहे हैं चुपके चुपके। और चलिए अब की बार प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला है उदित नारायण जी।

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

और गीत आप सुने फिल्म ब्रह्मचारी का मारदानु सनम, हाँ सनम के जरिए। एंड सुनने वालों अब उजाला रेडियो पर मोहम्मद रफी साहब फिल्म वारिस का गीत को लेकर के

आनंद एक बेशारा प्यार का मारा, मोहम्मद रफी साहब से आप गीत को सुने, फिल्म वारिस से निकाला हुआ मोईगाना तो या मार। अब सुनिए एक और मोईगाना पेश है एंड ओक मोहम्मद रफी मडान लता जी के साथ। उजाला रेडियो है ये, तू जाने है तो

0: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujjala Radio.
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना।

उजाला रेडियो पूरा हॉलैंड में डीएबी प्लस पर और दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए उजाला.nl।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर हॉनर टूर ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

0: ये है उजाला रेडियो, रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

बिल्कुल ट्रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 59 vragen voor maar 100 euro ऑफ उजाला रेडियो. दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het? Door shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

फट गई तो चादर बिछाऊंगी, चादर की कोना फट गई तो दर्जी बुलाऊंगी, दर्जी की सुई टूट गई तो लोहार बुलाऊंगी, लोहार का पसुरा टूट

हल्दी न छोड़े दर्दी बुलबुल न छोड़े रंग, हल्दी न छोड़े दर्दी बुलबुल न छोड़े रंग। तब मर्द बेचारा क्या करे जब रंग न छोड़े संग।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

कमर। ब्रास अफेयर्स इंडोर समर एडिशन जिया इवेंट सेंटर Den Haag में zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Check voor meer informatie op brasafest.nl.

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तंत अख्तियार औत श्रीमती फ्रीद महेश भैरो सिंह का पति, लड़कन चित्रा और आनंद महेश के पिता, शांति गयाधर का ससुर, दो लड़कन के नाना, दो पतों के ननमा ससुर, तीन लड़कन के परनाना, दो लड़कन के आजा। अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। सूरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था। अम्स्टर्डम से समस्त परिवार महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तंत अख्तियार औत श्रीमती फ्रीद महेश भैरो सिंह का पति, लड़कन चित्रा और आनंद महेश के पिता, शांति गयाधर का ससुर, दो लड़कन के नाना, दो पतों के ननवा ससुर, तीन लड़कन के परनाना और दो लड़कन के आजा। अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आने वाले शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक इतवार सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे दिन्सदाग हाल्फद्री किए जाएंगे वेस्खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम उस दौर में।

0: था।
1: और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए, नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तंत अख्तियार और श्रीमान हरि प्रसाद दून महेश, स्वर्गीय लीन महेश, शर्मा महेश, हिल्दा महेश, अंद्रे महेश, स्वर्गीय शिव महेश, दियान महेश, मणि महेश, हेल्विन महेश, योहान महेश, शांति महेश और रिधि महेश के बड़ा भाई, सभी छुटकी के बड़को दो बहनोई के सार, अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है और जिनकर पैदाइशी सूरीनाम इलाका सरमाका में जो थे। नीदरलैंड और सूरीनाम से परिवार महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बुध के रात, कल बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तंत अख्तियार औत श्रीमान हरि प्रसाद धून महेश, स्वर्गीय लीन महेश, शर्मा महेश, हिल्दा महेश, अंद्रे महेश, स्वर्गीय शिव महेश, दियान महेश, मणि महेश, हेल्विन महेश, योहान महेश, शांति महेश और रिधि महेश के बड़ा भाई, सभी छुटकी के बड़को दो बहनोई के सार और सभी लड़कन के दादा और मामा, अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु हो गई है और सूरीनाम इलाका सरमाका के पैदाइशी जो था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले शनिचर दिन में 5 बजे से 6 बजे तक और इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक उत्फार्थ सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे दिंसडक आंस्टांद हालफ द्री किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। आम्स्टरडम से समस्त परिवार दुखी महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत। श्रीमती शर्मा दुखी महेश का बड़ा भाई श्रीमान राम दुखी का सार नरकन अशोक उषा जेरल्ड सीना सुनीता एल्स और रोमियो के मामा, तीन दामाद और दो पतो के मामा ससुर, चार लड़कन के आजा, 11 लड़कन के नाना और चार लड़कन के परनाना और पर आजा। आम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है और सूरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था। आम्स्टरडम से परिवार दुखी महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए बुध यानी कि कल रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत। श्रीमती शर्मा दुखी महेश का बड़ा भाई श्रीमान राम दुखी का सार लड़कन अशोक उषा जेरल्ड सीना सुनीता एल्स और रोमियो के मामा, तीन दामाद दो पतो के मामा ससुर, चार लड़कन के आजा, 11 लड़कन के नाना और चार लड़कन के पर नाना और पर आजा। आम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक एटफर्ड सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे देंसदाख हालफ द्री किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेग 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार मंगोन महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त ख्यार औत श्रीमती हरमीन महेश का बड़ा भाई श्रीमान राजन मंगोन का सार रेमोंड यानी और रिकार्डो के मामू डेमियन के आजा अंजेलिना का नाना अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। अम्स्टर्डम से परिवार मंगोन महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त ख्यार औत श्रीमती हरमीन महेश का बड़ा भाई श्रीमान राजन मंगोन का सार रेमोंड यानी और रिकार्डो के मामू डेमियन के आजा अंजेलिना का नाना अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले शनिचर के दिन में 5 बजे से 6 बजे तक और इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक एटफर्ड सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओकमेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे देंस दख आंस्टांड हाल्फ द्री किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओकमेरवेग 272 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्ज फरजोरखिंग समस्त परिवार महेश और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

बचकर 8 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये, मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और यहां से आप सुन सकते हो प्रोग्राम दिल की आवाज। सभी प्रिय सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। आप सभी को रतन का प्रेम से स्वागत है। बेहद खुशी है हम कि आप सभी ने चुन किए हुए हैं यू आर उजाला रेडियो पर, एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से। अब से रात्रि में 11 बजे तक पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज। तो आप जहां पर भी हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे प्यारे सुनने वालों। चाहे वो आप काम पर हो, सड़क पर आप हिस्सा ले रहे हैं, विदेश से आए हो हमारे देश में या इस देश से गए हो विदेश, जिस तरह से भी आप सुन रहे हैं, जहां भी आप सुन रहे हैं, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। आप सभी की ओर मेरा ये प्यार पहुंचे। दिल की आवाज में 3 घंटे का ये प्रोग्राम में ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स, दर्द भरे नगमाए के साथ आपका दिल हम बहलाएंगे। और हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनने वालों, स्टूडियो में भी आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे कुछ बातें भी अगर आप चाहते हैं कर सकते हैं। 020-363-0000 पर आप ऐप कर सकते हो। आपके कामकाज के लिए मेरे प्यारे सुनने वालों, फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी आप करवाना चाहेंगे उजाला रेडियो के जरिए, जो भी जानकारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे, सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक आप दफ्तर को तार कर सकते हो। 020-409-0007 या तो 24 घंटे 7 दिन लगातार मेल के जरिए भी आप अपना कामकाज निभा सकते हैं, जानकारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं info@ujala.nl, जहां पर आपको ऐप करना है info@ujala.nl। ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे हम, आज का ओपनिंग सिलेक्शन की ओर आपको ले चलते हैं। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार का गाया हुआ गीत, जो हसरत जयपुरी जी, महान कवि हसरत जी का लिखा हुआ ये पॉपुलर सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, प्यार भरा नगमा किशोर कुमार गीत गाएंगे कि ये समा है सुहाना और नशे में सारे जहां है। पेश करता हूं हियर ऑन यू आर, एंजॉय मेरे प्यारे सुनो, शुभ रात्रि आप सभी को हम कहते हैं।

रही है नजर, नजर से अफसाने, और हो रहा है असर कि जिसको दिल जाने। देखो ये दिल की अजब दास्तां है, ये नजर जो है ये भूलती है और जुबां जो है ये दिल की जुबां है और दिल से नजर बोलती है। हो रहा है मिलन दिलों का मस्ताना, और हो गया है कोई किसी का दीवाना। अरे बाप, जहां दिल रुबा है अपना दिल भी वहां है, और जिसे प्यार कहिए सभी दरमिया है। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, महान कवि सॉन्ग राइटर जिनकी नगमाएं अमर है, ये खुद भी अमर है। इतनी सारी खूबसूरत नगमाएं इनके हाथों से लिखा गया, द ग्रेट हसरत जयपुरी जी, इनका लिखा हुआ गीत, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार अपने रोमांटिक आवाज में गीत गाकर सुनाए हैं। फिल्म का नाम घर घर की कहानी। जैसे जीवाड़ मेरे प्यारे सिनेमालो, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी को। इट इज 18 मिनट ओवर द क्लॉक फन, 8:18 व्यतीत हो चुका है, और स्वागत है आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और अदापर से। उजाला रेडियो के स्टूडियो रतन नाम से आज फिर एक बार मौका मिला है सेवा करने की आप सभी का। तो अब से जैसे मैंने कहा, रात्रि में 11 बजे दिल की आवाज पेश करेंगे विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स एंड द ट्यूलेट द ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स, जैसे आप सभी खवेंद हैं। हम पेश करेंगे ये प्रोग्राम के दौरान में जो बहुत ही कम उम्र में बिछड़ कर चले गए उस जहां वापसी नामुमकिन है, के इनकी खूबसूरत आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, एक रोमांटिक सॉन्ग मिलकर जो लिखा गया है, सईद क्वादरी और नीलेश मिश्रा जी, इन दोनों का मिलन कुछ इस तरह का गीत निकला और इसको आवाज दिया गया है के जी, लाजवाब बेमिसाल नगमा हीर ऑन यू आर।

मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां मेरा इश्क दीवानगी। है नहीं इश्क कोई मुझसे तेरा, तू मेरा या तू मेरे लिए बंदगी। मैं तो चाहूं तुझको मेरी जान बेपना, क्योंकि इतना फिदा हूं तुझ पे मेरी जान और वो भी बेपना। तो जरा सा दिल में दे जगह तू और सराजा अपना ले बना। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग जो मिलकर गाए हैं या लिखे हैं नीलेश शर्मा जी और शाहिद क्वादरी। केके की आवाज मेरे प्यारे सुनो लो, फिल्म का नाम जन्नत। जन्नत का ये नगमा पेश किया है नोलाख, जहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पर भी बातें हो सकते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। इरशद कमिल जी इनकी कलम का लिखा हुआ एक नगमा, मोहित चौहान, काफी पॉपुलर सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये भी कम रोमांटिक नहीं। व्हाट अ सॉन्ग जो हम पेश करने जा रहे हैं। ना है ये पना ना खोना, ये है तेरा ना होना, जाने क्यों होना ही है। तुमसे ही दिन होता है और सुरमाई शाम आती है, बस तुम ही से हर घड़ी सांस आती है। लाजवाब बेमिसाल, इतनी सारे प्यार के बयान एक ही गीत में, कमाल है। मोहित चौहान

या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सिने वालों, ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है। इर्शाद कमल जी का लिखा हुआ ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सिने वालों, और अपनी खूबसूरत आवाज में मोहित चौहान ने गीत को गाए हैं। जब वी मैट फिल्म का नाम, जब वी मैट, जब हमने तुमसे मिले अदीसा उमिती इस सभी तो। 2 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सिने वालों, और वो भी 8:30। एक डर भरे गीत लेकिन काफी पॉपुलर सॉन्ग की ओर आपको हम ले चलते हैं। सावन कुमार जी इनके हाथों से लिखा हुआ एक एक शब्द, एक एक अल्फाज, द लेजेंड सुरों का बादशाह रफी साहब जी गीत गाकर सुनाएंगे हियर ऑन यू आर दिल की आवाज में। कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, और वो भी आज के बाद।

मेरा मिलना, तू मेरा मिलना समझ ले ना एक सपना था, तुझको तो अब मिल ही गया है जो तेरा अपना था, और हमको दुनिया में समझना ना सनम, और वो भी आज के बाद। घिर के आएगी घटाएं बरसे सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की, और गले हम गम को लगाएंगे सनम आज की बात, लेकिन तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। शिकवा शिकायत ये डर्ट भरा नगमा सावन कुमार जी का लिखा हुआ ग्रेट सॉन्ग, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग, और अपनी खूबसूरत आवाज में सुरों का बादशाह द लेजेंड पटना श्री रफी साहब ने गीत को गाए हैं। हवस फिल्म का नाम, मेरे प्यारे सुनने वालों, हवस। मेरे प्यारे सुनो, आप सुन रहे होंगे उजाला रेडियो पर चर्चा हो रहे हैं कि शनिवार और रविवार 29 अगस्त और 13 अगस्त को क्या होने वाले हैं दनाक शहर में। उजाला रेडियो रचा रहे हैं प्रणाम ब्रास ऑफिस, और आपको मालूम रहे कि हॉलैंड के जितने भी आर्टिस्ट हैं लगभग सभी वहां पर मौजूद होंगे। ब्रास ऑफिस जो है इंडोर जिया इफेंस सेंटर में जो रचाया जाएगा, 80% के जो अर्ली बर्ड खुदकूपस्त कार्ट जो है, मतलब ये कि वो बिक चुका है, तो जितनी जल्दी आप टिकटें खरीदेंगे अर्ली बर्ड का तो बहुत ही सस्ते दाम में आपको टिकटें मिलेंगे। वहां पर जाएंगे आप, एंजॉय करेंगे फुल पैक एंटरटेनमेंट, नेचुरल लाइक द बेस्ट म्यूजिक फॉर्मेट्स, जैसे मैंने कहा हॉलैंड का जितनी भी आर्टिस्ट हैं हमारी हिंदी पॉप सीन में लगभग सभी वहां पर मौजूद होंगे। फूड प्लाजा लॉन्ज भी होंगे ग्रैंड हॉल में, फुल पैक एंटरटेनमेंट, और आप भरपूर एंजॉय करेंगे मेरे प्यारे सुनोल, ना सिर्फ खाने, म्यूजिक, डांस, शॉपिंग, मार्केट जो है थोड़ा सा कल्चर के भी बात होंगे, फैमिली एंटरटेनमेंट भी होंगे, और हमारे जो बॉलीवुड का जो हम पसंद करते हैं उसका भी कुछ फाइब्स और बीट होंगे। ब्रास ऑफिस इंडोर समर एडिशन जिया इवेंट सेंटर में सैटरडे 29 और संडे 30 अगस्त। चेक फॉर द कार्ट मेरे प्यारे सुनने वालों ऑफ www.brassoffice.nl, और अर्ली बर्ड जो 80% बिका चुके हैं वो टिकटें सिर्फ 8,50 में है। दैट इज निक्स फॉर व्हाट यू अलमा फोर गेशोटल क्राइग, और जैसे मैंने कहा हमारे पॉप सीन जितने भी आर्टिस्ट हैं उसका नाम लो, और उसका जवाब इस हायर ऑफ इस हायर इस द बेंट जवाब होंगे हाँ, तो बस आपके हाथ में है मेरे प्यारे सुनने वालों, आप एंजॉय करना चाहोगे। 2 दिन लगातार जिया इवेंट सेंटर डनहाग में, तो www.brassoffice.nl जहां पर आप टिकटें खरीद सकते हैं। श्रेया घोषाल बेनी दयाल प्रसून जोशी जी का लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूं, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना ये यकीन, या सोच मैं अरे बाप रे दादा हु कान सुन मोए फ्राउ ऑफ अ मन फॉर मई वर्ड

कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, उतर आए झील में जैसे चांद उतरा है कभी, हौले हौले धीरे से गुनगुनी धूप की तरह से रंग में तुम। लाजवाब बेमिसाल रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, और कमाल की अरफाज से प्रशून जोशी जी का लिखा हुआ, बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाजें। फिल्म का नाम खजनी। मेरे प्यारे सुनने वालों, रिमेंबर दिस इज यू आर। हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के लिए चेक www.pantujala.net। नुसरत बादर या बदर, एक विनीत ऑफ की आम उत्पन्नातरक ऑफ नीट, तो दोनों ही कहता हूं, नुसरत बादर या नुसरत बदर। और सलीम बिचनोड़ी जी, ये दोनों ने मिलकर गीत खूबसूरत लिखा, द नेम दैट स्पेल्स मैजिक उदित नारायण, और कविता कृष्णमूर्ति जो मिलकर गीत गाएंगे, पेश करने जा रहा हूं हीरो निवार ये रंगमा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो वालों। सात सुरों का सबको पता है, लेकिन आठवां सुर है तो, और सात रंगों की सबको खबर है, लेकिन आठवां रंग है तो। ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो, नुसरत बदर जी और सलीम बिजनौरी जी ने मिलकर लिखा। द नेम दैट स्पेल्स मैजिक उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति, इन दोनों की खूबसूरत आवाजों में खूबसूरत गीत पेश किया गया है। स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह सुन रहे हैं प्रोग्राम सुतमेर शहर में। धन्यवाद स्वागत आपके ऐप के लिए। हम सेल्फीन में भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं सुशीला चंद्रिका सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। धनाक शहर में मिक जी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, मिक थैंक यू वेल एंजॉय। हिरवाल्दो जी और मारखरी जी भी आप दोनों ने ऐप किए हैं, दिल से धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू वेल। उत्साह नतुलक हमारे प्रिय बहना जी, मेरे बड़े बहन उषा ने भी ऐप किया है, उषा डंकीवेल आपके ऐप के लिए। हालिम का आइलिन जी भी ने ऐप किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आइलिन जी आपके ऐप के लिए। और धन्यवाद भी हम कहेंगे अमसराम कारी या कल्लू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। लता जी को हम पेश कर रहे हैं, मजरू सुल्तानपुरी जी का

संग चलूंगा मैं और वो भी बनके तेरा सजन, आ तेरी मांग भर दूं ओ मेरी दुल्हन। कैसे कहूं जाने वफा कितना मुझे प्यार दिया, तूने मेरी किस्मत को चाहत से संवार दिया। मेरी दुनिया मेरी मंजिल और कहीं नहीं लगता है तेरे बिन ये दिल। तेरी खुशबू से तुम है के मेरा ये सारा बदन। ब्यूटीफुल अल्फाजे, बहुत खूबसूरत शब्द, द ग्रेट समीर जी का लिखा हुआ, द टाइगर ऑफ बंगाल, कुमार सानू की आवाज। फिल्म का नाम तियाज शक्ति। मेरे प्यारे सुनोलो, ये उजाला रेडियो है, लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल की आवाज। एंड इट इज 13 मिनट ओवर द क्लॉक फन नेहा, 9:14 व्यतीत हो चुके हैं। दिल की आवाज में मेरे प्यारे सुनोलो ले चलता हूं आपको अगले गीत की ओर। अब की बार अभिजीत, इनकी आवाज में एक दर्द भरा गीत आप सुनेंगे, ये भी समीर का लिखा हुआ है। मेरे प्यारे सुनोलो, अगर आप किसी से प्यार करें और एक तरफ से वो प्यार हो, याद आने से मुइलक है, बहुत लोगों से होता है ये कि आप किसी से प्यार करें और उल्टा आपको प्यार नसीब नहीं। लेकिन क्या करें, दिल की ये बात है, दिल किस पे किस वक्त आ जाए उस पर आप काबू नहीं कर रख सकते हैं। और ये इश्क भी दिल से निकलकर आंखों में, चेहरे पर, आपके जुबान पर निकल आकर आप उसे छुपा नहीं सकते। और कोई लोग ऐसे हैं कि छुप छुप कर बिना इजहार किए जिंदगी अपने पूरा किसी से प्यार करते रहे, शादी नहीं करते लेकिन इजहार भी नहीं करते, उसे नहीं कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और दूसरा वो है कि वो खुद ही जिसे वो प्यार करते हैं वो अपना जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, किसी से प्यार करते हैं, शादी हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, और ये बेचारा या ये बेचारी अपना प्यार लेकर अपना अकेलापन उसी में अपना जीवन बिता देते हैं। मैं तो कहता हूं अगर प्यार है तो इजहार करना चाहिए। सेहत नहीं है पिया या कहे खरे है, तू जाने दो। अभिजीत भट्टाचार्य, पेश करता हूं गीत।

से क्या बात है, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, और तेरा आशिक हूं मैं जमाने से, रोकना मुझको पास आने से, अरे पास तो पहले जाओ ना, फिर देखो कि वो रोकता है या नहीं, ऐसा ना हो वो रोकेगा नहीं और गले भी लग जाए। अगर प्यार हो मेरे प्यारे सुनो, इजहार करना चाहिए, और जो लोग इजहार नहीं करते हैं, या wat zeggen de Nederlanders, niet geschoten is altijd misgeschoten, तू जाने तो। कभी कभी जिंदगी में जुआ भी खेलना चाहिए। कुछ लोग भी ये कहते हैं कि जिंदगी जो है एक जुआ है। ये मुझसुम्स इनिशिएटिव नेम है, रिसिकोस नेम है, आगे बढ़ने के लिए। और जो डर गया समझो वो मर गया, है ना। रतनाम से रोहिणी कल्लू जी का एप आए हैं, डंक्यू वेल। और आमस्टरडाम शहर का सत्या जी आपके एप भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्सब्रुक का हेर इंद्रू जी और चित्रा जी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, शुभरात्रि एंड डंक्यू लिवेल। हमारे प्रिय मेरे प्यारे सुनने वालों, सही लुधियानवी जी का लिखा हुआ गीत मैं पेश करने जा रहा हूं, कमाल के गीत सहीर जी लिखते थे, हमारे बीच नहीं रहा सहीर जी, इनके प्रोग्राम हम सजाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, होप लग देती यार, प्लानिंग बहुत बहुत बहुत बहुत गंभीर है। और मैं पिछले साल इसका प्रोग्राम बनाना चाहता था, लेकिन जिसनी खलुक्त प्रोग्राम पूरे के पूरे तैयार है मेरे प्यारे सुनने वालों, मार यूट बखराई पतखात प्लानिंग, और कभी कभी फकांसी हो जाते हैं, तो ये आता है वो आता है, ये मुझ फर्स तो लुक नहीं होता है। लेकिन सहीर लुधियानवी जी, मैंने इनका प्रोग्राम 2017 में एक बार छोटे रूप में पेश किया था, लेकिन अब की बार बड़े रूप में एक दो प्रोग्राम इनका हम बनाएंगे, तो फिर आप जाकर देखेंगे कितनी महान सॉन्ग राइटर, कितनी महान कवि सहीर जी है। इनके नाम बहुत बड़े हैं और इनके गाने जो है आप सभी पसंद करते हैं। मयूली फेतनत मिसकिन नीत कि इनके हाथों से, इनके दिमाग से निकला, जाकर इनके हाथों से, उन्हीं के कलम से कोरे कागज पे लिखा गया है खूबसूरत गीत, और वो खूबसूरत गीत जो है जैसे कि ये जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, संगीत की देवी लता जी अपनी खूबसूरत आवाज में गाकर सुनाएंगे, और आप तक हम पेश करेंगे ये प्रोग्राम दिल की आवाज में। कि हवा चले कैसे, ना तू जाने ना मैं जानू, ये तो वो ही जाने, लता जी की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, पेश करता हूं नगमा।

हवा चली कैसे, ना तू जाने ना मैं जानू। संगीत की देवी लता जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनो, हमारे प्रिय सहीर लुधियानवी जी का लिखा हुआ गीत लता जी ने गाकर सुनाए हैं। ये था फिल्म डाक का एक नगमा। दिल की आवाज है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और प्रणाम से जुड़े हुए हैं अमस्टरडम सिंड्रोम का जो रहने वाली है प्रभा जी। थैंक यू वेल आप के ऐप के लिए। एंजॉय दिल की आवाज।

समीर का लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, बाबुल सुप्रियो की आवाज की परी परी है एक परी, आसमां से आ गिरी और सामने मेरे खड़ी, और मुझे तो उससे प्यार हो गया।

वो चांद तारों की रोशनी है, वो मंदिरों का दिया, उस जाने मन की बस एक झलक ने पागल मुझे कर दिया। हाँ परी परी है एक परी, आसमां से आ गिरी और सामने मेरी खड़ी, मुझे उनसे प्यार हो गया। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग समीर के लिखा हुआ नगमा बाबुल सुप्रियो जी ने गाकर सुनाए हैं। फिल्म का नाम हंगामा, मेरे प्यारे सुनने वालों हंगामा। 9 मिनट गुजर चुके हैं सरे 9 बजकर, मेरे प्यारे सुनने वालों, ये है उजाला रेडियो और आप सुन रहे हैं लाइफ एंड आरक्यूआर के स्टूडियो रतनाम से प्रोग्राम दिल की आवाज। एक नगमा फाइज अनवर और प्रवीण भरतवाज जी का लिखा हुआ द नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। आपकी सेवा में हियर ऑन यू आर दिल की आवाज में। आप सभी से थोड़ा सा प्यार हुआ है लेकिन थोड़ा है बाकी।

दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है, मेरी चाहत है अब क्या तू नहीं जानती है, उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ दे दे, तेरा हो जाऊंगा मैं हाथों में हाथ दे दे, थोड़ा सा प्यार हुआ है और थोड़ा है बाकी, और हमने तो अपना दिल तुझे दे ही चुके हैं, बस तेरी हाँ है बाकी। कमाल का गीत, रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो वालों, फाइज अनवर जी और प्रवीण भरद्वाज जी का मिलन, खूबसूरत की दोनों ने मिलकर लिखा। आवाज का जादू, द नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण और अलका याग्निक मिलकर गीत गाए हैं, मैंने दिल तुझको दिया फिल्म का नाम। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनो वालों, फेवरेट सॉन्ग के बाद एक और पुराने फेवरेट सॉन्ग आप तक मैं पेश करने जा रहा हूं, जो महान सॉन्ग राइटर आनंद बख्खी जी, इनके बारे में मैं क्या कहूं मेरे प्यारे सुनो वालों, इनके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहोगे खामर गूगल, बहुत सारे इनके बारे में लिखा गया है और क्यों ना लिखा जाएगा, इतनी सारी कविताएं, नज़में, संगीत, वो भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हजारों गीत इनका हमने सुने, हम पसंद करते हैं, और उनमें से एक ये रोमांटिक सॉन्ग हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और संगीत की देवी लता जी जो मिलकर गाएंगे, पेश करने जा रहा हूं ये नगमा, आप इससे आंख बंद करके सुनिए, क्यों क्या ख्याल है।

यार तू प्रीत, तू चांद, तू रात, जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू सांस, तू गीत, हाँ तू रूप, तू है रंग, और छूटे ना ये संग तेरा मेरा, जुदा होना बहुत मुश्किल है। तो बस अब दूर दूर तुम रहना नहीं, आज और कुछ कहना नहीं, क्योंकि ना लागे मेरा अब ये जिया रे। तुम तो कहे तो तेरे द्वारे मैं ले आऊं बारात। या ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, इस तरह के नगमाओं में हम गुम हो जाते हैं, डूब ही जाते हैं खूबसूरत अल्फाजों में। आनंद बख्शी जी, कमाल का गीत आपने लिखे और इतनी रोमांटिक उनकी आवाजें, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और स्वयं संगीत की देवी लता जी। पराया धन फिल्म का नाम मेरे प्यारे सिनेमालो। इस घंटे का आखिरी गीत मैं पेश करने जा रहा हूं, उसके बाद ब्रेक, ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर हम जरूर से जरूर मिलेंगे। चलो एक और रोमांटिक सॉन्ग गुलजार साहब जी का लिखा हुआ, सोनू निगम की आवाज, फ्रॉम द मूवी जाने मन, पेश करने जा रहा हूं।

तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे कच्चे धागे से मैं बंधा आया हूं ऐसे। मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना वापस मेरा ये दिल मोर के। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनो, इतनी प्यार इतनी रोमांस इस गीत में है। आनंद बख्शी महान कवि, इनकी कलम से लिखा हुआ एक एक प्यारे शब्द। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और संगीत की देवी लता जी ने मिलकर गीत गाए हैं। पॉपुलर मूवी बिग ब्लॉकबस्टर मूवी हरे राम हरे कृष्ण से ये नगमा को मैंने निकाल कर आप तक पेश किया है। 11 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 10 बजकर। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप ही का मन चाट और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। मैं हूं आपका यारो का यार रतन राम दुलारे पांडे और दिल की आवाज आप सुन रहे हैं। रात्रि में 11 बजे तक आपका साथ हम देंगे और इस घंटे का प्रोग्राम में कुछ पुराने नगमाए वो ब्लाइफ इन द यार 70 एन यार 60 और शायद उससे भी पुरान जो भी मेरी नजर में आएगा सेवा में पेश करेंगे। प्यार भरे या तो दर्द भरे। मेरे बड़े भैया सुन रहे हैं प्रोग्राम खौड़ा शहर में, राजेश छुटकन डंकीवेल जिन आपके ऐप के लिए एंजॉय दिल की आवाज एंड फाइंड अचाफ सेम्बेन। राजेश छुटकन जो मेरे बड़े भाई है। गुलशन मावना जी का लिखा हुआ गीत मैं पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों। एक नगमा इतनी रोमांटिक है और इसमें थोड़ा सा रोथना मनाना भी है। तू जाने तो प्यार में कुछ छेड़छाड़। संगीत की देवी लता जी और सुरों का बादशाह द लेजेंड पद्माश्री रफी साहब जी गुलशन मावरा जी का लिखा हुआ गीत मिलकर गाएंगे। हियर ऑन यू आर मैं पेश करता हूं खूबसूरत गीत। तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है।

तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है, और दिल ने ये माना कि यार क्या है। गुलशन बावड़ा जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुन वालों, संगीत की देवी लता जी और सुरों का बादशाह लेजेंड पटना श्री मोहम्मद रफी साहब जी ने मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम अदालत। 17 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुन वालों, 10 बजकर, और ले चलते हैं आपको एक गीत की ओर जो देवखोली जी ने लिखा और हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी गीत गाकर सुनाएंगे। ना अपना था जो कल गुजरा, और जो अब है वो तो है गैरों का। अपना दिल संभाल के, जिगर संभाल के बैठना और इत्मीनान से ये गीत सुनना। मुकेश जी की आवाज़।

अपनी नजरों से बहुत दूर छुपा दूं खुद को, जी में आता है कहीं रख के भुला दूं खुद को। ना अपना था जो कल गुजरा, जब है वो तो है गैरों का, नहीं उम्मीद अब कोई, कल हमारा कल भी क्या होगा। मेरे प्यारे सुना दर्द भरे गीत देवखोली जी के कलम से लिखा हुआ, इतनी दर्द भरे अल्फाजे और मुकेश जी की दर्द भरी आवाज, द हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश जी की आवाज में। फिल्म का नाम जीवन रेखा, मेरे प्यारे सुनने वालों जीवन रेखा। मैं पेश करने जा रहा हूं हमारे प्रिय सही लुधियानवी जी का लिखा हुआ नगमा, नाइटिंगेल आशा जी ये नगमा। आगे भी जाने ना तू और पीछे भी जाने ना तू, बस जो है यही वो ही पल है,

आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। 19 आशा जी की आवाज और हमारे प्रिय सहेल लुधियानवी जी का लिखा हुआ गीत 19 आशा जी ने गाकर सुनाए हैं। फिल्म का नाम वक्त, मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त का ये नगमा आप तक हमने पेश किया है। It is 1 minute over half 11, मेरे प्यारे सुनने वालों, सरे 10:01 गुजर चुके हैं। एक नगमा पेश करने जा रहा हूं गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ। गुलशन बावरा जी, इनके बारे में मैं क्या कहूं, इनका प्रोग्राम बना चुके हैं कोई 3-4 साल पहले बैक टू द फ्यूचर में, और अगर आपको मालूम होंगे, याद होंगे, डन वेट यू, हम इनका प्रोग्राम 4 या 5 बनाए थे। इतने सारे पॉपुलर सॉन्ग्स इन्होंने लिखा है, द 70s और द 80s में, जो बहुत सारे इतनी सुपर डुपर हिट थे, और उनमें से मैं पेश कर रहा हूं आज एक आपके लिए, एक नगमा वंस अगेन नाइटिंगेल आशा जी विद हसीनों के पुजारी किशोर कुमार। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह।

एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, और जो हो तन मन में हो रहा है वो तो होना ही था। खूबसूरत गीत है मेरे प्यारे सुनो, रोमांटिक सॉन्ग नाइटिंगेल आशा जी और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाजें, गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ ये गीत फ्रॉम द मूवी खेल खेल में आप तक हमने पेश किया है। मेरे प्यारे सुनो, आपको मालूम रहे कि आज मैं प्रोग्राम दिल की आवाज पेश कर रहा हूँ, अंदान बैने का डकूमन त्रिवीक आपकी सेवा में महाजे नहीं रहेंगे। आज बना रहा हूँ प्रोग्राम और अगले प्रोग्राम मेरा जो होंगे अगले महीना जो अगस्त है, अगस्त का बुधवार वोंसदाग 12 अगस्त को सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे। जैसे कि बैना डकूमन त्रिवीक बैने का नीत 12 अगस्त पेश करेंगे प्रोग्राम फिर एक बार बैक टू द फ्यूचर। डोंदाग 13 को पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज, और सैटरडे 15 सैटरडे नाइट फीवर आपको मालूम रहे। तो आज प्रोग्राम बना रहा हूं, कुछ मैं देख रहा हूं 20 मिनट और आपका सेवा हम करेंगे। एक दर्द भरे गीत मैं सुनाने जा रहा हूं आप सभी को, संगीत की देवी लता जी की आवाज और आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ नगमा लता जी गाकर सुनाएंगे कि मेरा परदेसी ना आया।

मेरा परदेसी ना आया, सबके मन के मीत, सबके मन के मीत मिले हैं, बागों में फिर फूल खिले हैं, मेरा मन क्यों मुरझाया, हाय रे मेरा परदेसी ना आया। संगीत की देवी लता जी की आवाज, दर्द भरे गीत द ग्रेट आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, लता जी ने गाकर सुनाए हैं। फिल्म का नाम मेरे हम सफर, मेरे प्यारे सुनवालों मेरे हम सफर। और अभी एक गीत हम आपको सुनाएंगे जो लता जी का एक फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी सॉन्ग। फिलहाल तो एक रोमांटिक सॉन्ग की ओर आपको ले चलता हूं। ये गीत काफी पॉपुलर है, आजाद भोपाली जी का लिखा हुआ है और गीत जो मिलकर गाए हैं द लेजेंड सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब जी और हेमलता जी की। दिल करने लगा है प्यार तुम्हें।

दिल करने लगा है प्यार तुम्हें, ये बात तुम ही समझाओ हमें, इजहार करे तो कैसे करे। आजाद भोपाली जी का लिखा हुआ अल्फाजे शब्द जो मिलकर गीत गाए हैं, खूबसूरत प्यार भरा। डलेजन पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी और हेमलता। मेरे प्यारे से अब वक्त आ गया है, आप सुन रहे हैं धुन की आखिरी दो नगमाएं आप सभी की सेवा में पेश करने का। एक गीत लता जी का हम सुनाएंगे आप सभी को, राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ फिल्म फेयर अवार्ड जीता हुआ गीत कि तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा। और उसके बाद में गीत हम पेश करेंगे योगेश जी का लिखा हुआ किशोर कुमार की आवाज में कि भरी सुनी सुनी है। मेरे प्यारे सुनोला आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी से फिर मिलेंगे 12 तारीख अगस्त को, रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज। टेक केयर और रिमेंबर आई लव यू ऑल।

बहुत दिनों से मैंने दिन गिनने छोड़ दिए। कौन ये हिसाब रखे? बचा सवाल कि मैं कहां कहूं, तो कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो कहीं

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: थोड़ा मस्ती, थोड़ा खुशी, थोड़ा हलचल उजाला रेडियो।
3: आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन यू आर।

0: एक से एक आवाजों और गीतों की पहचान सुनिए उजाला रेडियो पर।
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले ओ बम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब,

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है. बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.